ये हमला रूस यूक्रेन जंग को मजीद हवा दे सकता है और इसे फैला सकता है। वजारत का दावा है कि यूक्रेनी इंतजामिया ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जो तेहरान के खिलाफ कीव के गैर मंतकी और मुआंदाना रवैये का अक्कास है। इस बात का यादा करते हुए कि तेहरान रूस यूक्रेन तनाज़े में कभी मुलव्वस नहीं रहा, वजारत खारजा ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय ममालिक और तमाम अरकान से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेनी इंतजामियों को इसका जिम्मेदार ठहराएं। वजारत ने कीव पर बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने, तनाज़े को वसअत देने और अदम तहफ़ फैलाने की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया। ईरानी उमूर खारजा ने वाज़ किया कि वो बैन अक़वामी कानून के तहत हासिल हक़ के खुद इरादियत के उसूल के मुताबिक मुल्क के मफादात और कौमी सलामती के तहफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ सिविलियन जौहरी माहिदा सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ेगा जब सऊदी अरब इब्राहिमी माहिदों में शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि इस माहिदे में मवाद की अफजूदगी नहीं होगी और उन्होंने इस माहिदे को सिर्फ गैर अस्करी इस्तेमाल के लिए करार दिया। याद रहे कि सऊदी अरब तवील अरसे से कह रहा है कि वह फलस्तीनी रियासत के क़याम के रोड मैप के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी धांधली में मुलव्वस अफराद के लिए सख्त तरीन सज़ा का अहद किया है और सवालिया पर्चों के लीक होने के मामलों से निमटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का वादा किया है। उनके ये बयानात नई दिल्ली में हज़ारों तलबा की जानब से इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालबे के लिए निकाले जाने वाले एहतजाजी मुजाहरों के बाद सामने आए हैं। ये एहतजाजी मुजाहरे 2024 में दोबारा इंतखाब जीतने के बाद से मोदी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बन गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फिजाई दिफाई मिसाइलों के गिरते हुए जखायर पर तशवीश के बायस ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तेजी लाने के मंसूबों को आर्जी तौर पर रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला जुम्मे के रोज सीनियर मुशीरों और काबीना के हुक्काम के साथ एक इजलास के बाद किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि फौजी हुकाम ने खबरदार किया था कि दोबारा शुरू की जाने वाली बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ पैट्रियाट इंटरसेप्टर और दीगर फिजाई दिफाई गोला बारूद को ख़तरनाक हद तक कम कर सकती हैं, जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजियों और अड्डों के तहफ़ के लिए दरकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप इंतजामियों को यह तशवीश भी है कि कशीदगी में मजीद इजाफा ईरान की तरफ से शदीद रद्द अमल को हवा दे सकता है, खलीजी इत्तेहादियों को दूर कर सकता है और आलमी तवानाई और पनाह गुजीनों के बहरान को मजीद खराब कर सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने मुबैना तौर पर ज़ाती गुफ्तगू में खबरदार किया कि बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करना मुमकिन तो है, लेकिन इससे अमरीकी सेंट्रल कमांड के पास दस्तियाब इंटरसेप्टर ज़खायर में नुमाया कमी आएगी, जो मशरक़ वुस्ता में अस्करी कार्रवाइयों की निगरानी करती है। चीन ने अपने जुनूब मशरकी सूबे फूजियान के करीब आबनाए ताइवान के हिस्सों में दो रोज़ा लाइव फायर फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। ये मशकें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और चीनी वजीर खारजा वांग यी के दरमियान होने वाले मुजाकरात के एक दिन बाद शुरू हुई हैं, जिनमें ताइवान का मामला भी शामिल था। चीन ताइवान पर अपनी मलकियत का दावा करता है और उसने अमरीका की जानब से ताइपे के लिए रिकॉर्ड असलहा पैकेज की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता दिसंबर में इस खुद मुख्तार जजीरे के गिर्द अपनी सबसे वसी जंगी मशकें की थी। शाम के सरकारी अल अखबार या टीवी के मुताबिक इसराइली अफवाज ने आज गुज़िश्ता शाम के सूबे माफ़ कीजिएगा आज इतवार के रोज़ शाम के सूबे कुनेत्रा के देही इलाकों पर गोलाबारी की और मुबैना तौर पर मगरबी दरआ में ज़मीनी दरअंदाजी की। ब्रॉडकास्ट ने बताया कि इसराइली तोपखाने के गोले शुमाली कुनेत्रा में तरंजा गांव के बाहर ज़रई ज़मीन के करीब गिरे। ये उस उतार चढ़ाव वाले सरहदी इलाके में कशीदगी का ताज़ा तरीन वाक़िया है, ऐसे वक्त में जब अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटरेस खित्ते का दौरा कर रहे हैं। एक अलग वाक़े में जो फजर से पहले पेश आया, मुबैना तौर पर इसराइली अफवाज ने 3 फौजी गाड़ियों और एक बुलडोज़र की मदद से यरमूक बेसन में मारिया और अल अर्दा के देहातों में पेशकदमी की। वहाँ उन्होंने एक सड़क साफ़ की और अल अर्दा के अंदर एक फ़ौजी चौकी कायम की। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसराइली फ़ौज ने मुबैना गोलाबारी या ज़मीनी दरअंदाजी पर भी फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइली वजीर खजाना बेजलील स्मोत्रिच ने कहा है कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में नाबलूस के जनूब में वाक़ एली बस्ती में 763 नए गैर कानूनी आबादकार यूनिट्स बनाने का इरादा रखता है। इस इकदाम से आने वाले सालों में इस बस्ती का हजम 3 गुना बढ़ने की तवक्को है। इसराइल का चैनल 14 के मुताबिक स्मोत्रिच ने कहा कि इसराइल गैर कानूनी आबादकार फार्म्स और कम्यूनिटीज़ की तामीर जारी रखने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि ये रिहायशी यूनिट्स मकबूजा मगरबी किनारे में बेंजामिन रीजनल काउंसिल के मातहत आने वाली गैर कानूनी अली बस्ती में तामीर और तैयार किए जाएंगे। चैनल 14 ने बताया कि इन मंसूबों पर अमल दरामद से आने वाले बरसों में इस गैर कानूनी बस्ती का हजम 3 गुना बढ़ने की तवक्को है, जिससे वहाँ हज़ारों मजीद गैर कानूनी आबादकारों की रिहाइश मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने बारहा ख़ुद को इसराइल की तारीख में आबादकारी की सबसे ज़्यादा हामी हुकूमतों में से एक करार दिया है। इस माह के अवाल में स्मोत्रिच ने कहा था कि हुकूमत ने 2022 के आखिर में इक़्तदार संभालने के बाद अब तक मकबूजा मगरबी किनारे में 104 नई गैर कानूनी बस्तियों और 160 ज़रई आबादकार चौकियों के क़याम की मंजूरी दी है। फ़लस्तीनी आदाद व शुमार के मुताबिक मकबूजा मशरक़ी अलकुद्स समेत पूरे मकबूजा मगरबी किनारे में कायम 141 गैर कानूनी बस्तियों और 224 चौकियों में तकरीबन 7.5 लाख गैर कानूनी इसराइली आबादकार रिहाइश पजीर हैं। जर्मन मीडिया ने पुलिस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि बर्लिन के डाउनटाउन में एक परेड के दौरान एक गाड़ी हजूम में घुसने से एक शख्स हलाक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। यह वाकया हफ्ते के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक रात के तकरीबन 10 बजे टियरगार्टन ज़िला में एक परेड के दौरान पेश आया। पुलिस और हंगामी खिदमात के अमले ने जाय वकूआ पर भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की, ताहम उनकी हालत के बारे में फौरी तौर पर मज़ीद कोई मालूमात दस्तियाब नहीं हो सकी। पुलिस और हंगामी खिदमात की कार्रवाई के दौरान मुंतजमीन ने मुतासर इलाके में परेड को ख़त्म कर दिया। बिल्ड अखबार ने आनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि एक सफ़ेद रंग की वैन तेज़ रफ्तारी से हुजूम में घुस गई। इस वाक़े के बाद एमरजेंसी डिस्पैच सेंटर में बड़े पैमाने पर हलाकतों या जख्मियों का अलर्ट जारी कर दिया गया। फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि 44 हंगामी इमदादी अहलकारों को जाय वकूआ पर तैनात किया गया था। ब्राज़ील के सेनेटर फ्लावियो बोलसोनारो ने अक्टूबर के इंतखाबात में सदर लुइस अनासियो लूला दी सिल्वा का मुकाबला करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें अर्जेंटाइन के सदर हावियर माइली की हिमायत, उनके कैद वालिद का मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा पैगाम और इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का वीडियो खिताब पेश किया गया। बोलसोनारो ने टैक्सों में कटौती और जरायम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का अहद किया, जबकि अपने वालिद यायर बोलसोनारो की सियासी मीरास को आगे बढ़ाने के अज़म पर भी जोर दिया है। उन्होंने साओ पोलो में इंतखाबी मुहिम के आगाज़ की तकरीब में सब्ज़ और पीले रंग के झंडे लहराने वाले हामियों से कहा कि यहाँ बोलसोनारो का खून है। सामिख सदर यायर बोलसोनारो वलुवा की जीत वाले इंतखाबात को उलटने की कोशिश में अपने किरदार की वजह से नज़रबंद हैं। साबिक खातून एवल मिशेल बोलसोनारो भी फ्लावियो बोलसोनारो की नामजदगी की तौसीक करते हुए एक वीडियो पैगाम में नज़र आईं। उन्होंने कहा कि फ्लावियो, खुदा आपकी नामजदगी को बाबरकत बनाए और आपकी हिफाजत करे। सेनेटर ने दिसंबर में अपने वालिद की तायद हासिल कर ली थी, लेकिन मई में लीक होने वाले पैगाम के बाद उनकी मुहिम की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिनमें उनका ताल्लुक कैद बैंकर डैनियल वोरकारो से जोड़ा गया था। बाद में सेनेटर ने तस्लीम किया था कि वोरकारो ने यायर बोलसोनारो के सियासी कैरियर पर बनने वाली एक फिल्म की माली मुआवनत भी की थी। बोलसोनारो सियासी इत्तेहाद कायम करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वस्ती दाएं बाजू की जमातों ने अब तक उनकी नामजदगी की तौसीक करने के बजाय गैर जानबदार रहने को तरजीह की है। वाज़े रहे कि एक सर्वे के मुताबिक दूसरे मरहले के मुमकिन मुकाबले में लूला को बोलसोनारो पर 43% के मुकाबले में 48% की बरतरी हासिल है, जबकि जून में ये शरह 43% के मुकाबले में 47% थी। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

शायद इसीलिए नक्शे कभी भी मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं रहे। किसी शहर को मरकज बनाना, किसी रास्ते को नुमाया करना या किसी जुग्राफियाई नाम को जिंदा रखना, ये सब कुछ ये बताता है कि लोग दुनिया को किस तरह से देखना चाहते थे और तारीख को क्या शक्ल देना चाहते थे। नक्शे कभी सिमत दिखाते थे तो कभी मुआशरों की इज्तिमाई याददाश्त की तामीर करते थे। आज एक चर्च के फर्श पर मौजूद वो पिचकारी हमें खामोशी से ये सरगोशी करती है, अगर कोई तहजीब तारीख के स्टेज से रुखसत भी हो जाए तो उसके पीछे छोड़े गए पत्थर बोलते रहते हैं। और कभी कभी मुजायका एक छोटा सा पत्थर सदियों से भुलाया गया किसी कदीम शहर का नाम पूरी दुनिया को दोबारा याद दिला सकता है। क्योंकि याददाश्त सिर्फ इंसानों के जहनों में ही नहीं रहती, बल्कि ये कभी किसी पत्थर पर, किसी पुराने रास्ते के निशान में और कभी सदियों से कदमों तले दबी इस पिचकारी में जिंदा रहती है। अगली किस्त में हम पत्थरों से निकलकर समंदर की तरफ चलेंगे। बहिरा रूम के साहिल पर हम एक ऐसी कदीम बंदरगाह की तरफ सफर करेंगे जहां हजारों सालों से ताजर, मल्लाह और काफले मिला करते थे। गजा वो कदीम शहर जो सिर्फ आज के वाकयात की वजह से ही नहीं, बल्कि कदीम दुनिया के अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक तजारती मराकज में से एक के तौर पर तारीख का रुख बदलने वाला शहर है। अगले प्रोग्राम में गजा दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाहों में से एक के उन्वान के साथ दोबारा मिलेंगे। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।